0: दिल हो या रात, खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो। रेडियो अमन 88.4 कारक आपके हर लम्हे का साथी।
1: द करक अनूर शो खो अखल को द पारा द खुशाले खबर उस्तासो पाखपल खार करक के द डीरो गण बीमारो लका शुगर अरकुन निसा फालिज जोड़न बीमारी गुर्दो की कहानी त्रिख की कहानी बियौलादी बावसीर मैदी जख्म ब्लड प्रेशर लुगन लगे दिल द वजूद सुस्ती प्रास्टेट दमला दर्द द जुड़ी बीमारी और द जनानो नारिनो नूर पट औकार बीमारो पशमूल द हर मर्ज इलाज पा तसले सरा दियो तकड़ा काबिल और तजुर्बाकार डॉक्टर सैयद जाकिर शाह बाचा से अपना खवलिश है। सूखची डी चिमिस बी चिमिस आर चिम्पी और नूर सनदुना तरला से कौन की द पेखवर मशहूर होम्यो फिजिशियन दे द नूर मालूम द पारा पा दे नंबर राबेता उकड़े 0331-52-65-340 पता याद साथे पिशावर हेल्थ मेडिकल सेंटर मलिक सिंजीत मखामख सिविक प्लाजा जेल चौक खरक।

आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती, सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 करक, आपकी अपनी आवाज़।

0: तड़ाई मासे में जी दार तो ये पता शापर सी देता शाय हो खस्ती थी
1: जानाती से तारखा ना पर शापर के हमें इश्मा वाशिंग पाउडर हो खस्ती थी
0: इश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वाल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस रंगे सरा प्रोवरे
1: बिल्कुल तारखा ना दा गिले वे हर वक्त मुताहा कुर्श डाले हो चे कराना में कुर्ता इश्मा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े दी वो स्टोल कुर वाला ना फसल दी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब उदार तो ये इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी जे कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटे सर खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सपई पवा लोसीना नखर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दार तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफ बने गलशे अंदरून ला की गेट जान से बे गाले पर शे मार्केट से देश मा मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफे जहीर से अब सारा उधर ते मिला भी जी।

0: फारूक।
1: वेलकम बैक वंस अगेन
0: उस्मान भी।
1: मुझे कहते हैं नईम अल्लाह उमर ज़ई। आप सुन रहे हैं अमन रेडियो नेटवर्क टांग एंड करक।
0: हर सहाबिये नबी
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 88.4 03170906075। राजमा काल सरफ्ता दिफात कास्मेटिक्स चिकम और दुन की दी पखेरुनो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम सलाम। इनाम अल्लाह उमर ज़ई से फ्रे जोड़े
1: कुर्बान शम। नईम अल्लाह उमर ज़ई जनाब। नईम अल्लाह।
2: नईम अल्लाह उमर ज़ई
1: सेहतो न खदिर हो रहा
2: बराबर है तबीयत से सदा
1: मनना सो खबर के जी कम देना।
2: दाऊद खबर को शेख सुल्तान
1: खा दाऊद से पखैरुना प्रोग्राम देखो खेगी।
2: ओ माशाल्लाह डेर डेर खान रखे डेर जबरदस्त प्रोग्राम दो माशाल्लाह मुख खुदा से सारा सिफर की उतना सवार हुए
1: मेहरबानी और सिफात कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हुए कने बीखी मिलाने दे रोड़े
2: यार न मुझे रोड़दा नहीं इसी मालूम खबर गर्मी तो डेर कलाका मुझे चिर बड़ा मरण शोर दे कहता डेर सख्त गर्मी
1: अल्लाह मबाद साता हूँ कने बिल्कुल गर्मी तो दखपल जान दखपल सेहत ख्याल साथे कुछ अरे गर्म के दरबान दी हुई पोजुद मुखारख हुई पोजुद में गर्म के राखी जी ब्या वजह से परता से इस्तेमाल हुए सिफात स्किन हर्बल स्प्रे
2: खा
1: सिफात स्किन हर्बल स्प्रे تو سر جب کم ملگری ناس تھی ٹوٹ تو زمال اخواہ سلامون امینا
2: وعلیکم سلام
1: اور شربت ہوتا اس کے خاک یخ یخ شربت اس کے مہربانی خوشحال ہو سیدھا بن سر رو رو او پل مین روڑا
3: آتم صاحب
1: ما سر خسر پا دقا خبری مین محبتون دی اتفاق دی تو سر پا اتفاق اسے گے کسا سو ملگری دی پا اتفاق اسر جون تیر گے ٹھیک دا جی

गर्ल के लिए बीबीसी ड्रामा ओएसटी प्ले करो प्लीज. आई मिस यू सो मच हैंडसम गर्ल. ओके जी थैंक यू सो वेरी मच. जहान मन ना भाई जी सलाम रेहान भाई कैसे हो. मैं इकरा वजीर फ्रॉम जनीखेल. भाई प्लीज प्ले लास्ट ड्रामा सॉन्ग. वैसे भाई आप आजकल कौन सा ड्रामा देखते हो. आजकल तो टाइम ही नहीं है कि ड्रामा देखे. अगेन इकरा वजीर कहते हैं स्पेशल टू यू एंड खलीफ नूर ब्रो को सलाम एंड हानी ऑफ़ा. ओके जी वालेकुम सलाम. थैंक यू सो वेरी मच. जहान मनना.

0: beh, il tirando da cedere Prada con quello che per un nome. Trurrurrua, a trurrurrua, a ora che si calina con lui, a un dexora, che suoce niente, o crimmo, sarà niente, o champagne, o sarà niente, che cazzo di baita ringo, che mali già baita con mi viglio, a o da gare malci da ahtara ho tirci le cose da pradak ta se virșar ci gane loca am jet lo nara uri am un pezi ozi o bel zezi loca ma pe sinde ca luna ca eu iniște o fără da
1: na os da si celle ga na os da si celle ce zamunga special da capnei no mai inda de da da ila ki malak saidul haq se ba inshallah ga da talash ila ka visit ki said show amjit show da sorry che kam dukandaran name ta so yadawi no aga ba inshallah said bor sara tol pro ईद तो एक महीने पहले गुजर गई है
2: मैं देखा सबका
1: अच्छा सब अच्छा ठीक है अच्छा ये बताओ अब्दुल्ला अंकल के किसी ने गोश्त दिया था कि नहीं घर में गोश्त पड़ा है कि नहीं बस खत्म हुआ है थोड़ा सा दिया था खा लिया सबने
2: नहीं गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह सब ने दिया था अभी भी पड़ा है एक दो दिन का
1: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त और ड्यूटी तो स्टार्ट हो चुकी है ना
2: ड्यूटी स्टार्ट हो गई
1: क्या समझ नहीं आई मुझे अच्छा इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे आप
2: तो साहिब के साथ गया था फिर मैंने कहा पिशावर जाता लेकिन मुझे गाड़ी नहीं मिल रही
1: चलो शुक्र है अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि आपको गाड़ी नहीं मिली बहुत शुक्र है अल्लाह का
2: क्यों खैर है
1: तो पिशावर में आप क्या कर लेते बड़ी ईद थी मेहमान इधर उधर हम कभी है कभी नहीं है क्या पता आप इतने दूर से आ जाते हम मौजूद ना होते फिर आप कहते कि यार देखो ये लोग मुझसे चुप गए दूसरी बात ये है कि आप इतने कमजोर हैं हम आपको जवाब भी नहीं कर सकते बड़े ईद में
2: तो
1: समझ आ गई अच्छा गोश्त तो हम वैसे ही डी आई खान में किसी कसाब को कॉल कर लेंगे कि भाई अब्दुल्ला अंकल को गोश्त दे दो मैं यहां से पैसे भिजवा दूंगा गोश्त का तो मसला ही नहीं है टेंशन ना ले आप
2: नहीं वैसे मैंने कहा सोमवार आया हूँ घंटे दो का रास्ता है मैंने कहा चलो भाई सर से मुलाकात हो
1: ये तो आपकी बात सही है कि एक दो घंटे रास्ता है इस्लामाबाद से चलो नसीब नहीं था इंशाल्लाह मेरे आने का 100% इरादा है डी आई खान इंशाल्लाह आऊंगा आपसे मुलाकात करूंगा अपने भाइयों से खैर मामद से हसन से उनसे भी मुलाकात करूंगा इंशाल्लाह आपसे भी मुलाकात करूंगा उसी होटल में मेरा स्टे होगा और इंशाल्लाह आपको बुलाऊंगा जरूर بہت شکریہ عبداللہ انکل بہت شکریہ تھینک یو جی اللہ حافظ عبداللہ انکل تھے میرے ساتھ ڈی آئی خان سے پروگرام کے راسر قربان صرف دو منٹ پاتی دی نو پدی دو منٹوں کے خوچے کم دے ہی سم نے کی گی خو دغ یوسو میں سی جنو بستا سو شامل کما خیال زمین سے عائشہ دا کوٹ کشمیر کے لینا نیاز محمد بیٹھانے اور دین علاوہ چکم دینو اویس فروم کالوشا ندا زما خوگے خور خود فون پہ لکھا مراغلے بڑے رضیات تھا مننا اور السلام علیکم اکرام بھائی سنگ خی ٹک ٹاک کے برابر ہے وائٹ ٹوتھ پاؤڈر دے مونگا استعمال صحیح دا ہاں انشاءاللہ کہ جون دو زندگی و بیا سبا ملاوی گو غوڑم دین اجازت ہر چرتو سے طلبات خوشحال و بریالی سے ایشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان

0: are listening to Radio Amon Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन पर अमन मोहब्बत और आगाही की आवाज़। हमारी नशरियात उन्हें मुस्बत इल्हाम पिलाएं और माशरे को जोड़ें।

से बिल्कुल हमेशा की तरह हमेशा गुंदे दे मो क्यूट स्वीट खुरजन यानी कि क्यूट रुशी खान हाँ बिल्कुल एडवांस के मैसेजेस करी दी नो कल हाँ दोष एडवांस के मैसेज की जब एडवांस के शामिल हुआ सही भाई जी अस्सलाम वालेकुम स्वीट भाई जानी दिस इज मी वन एंड ओनली और एंड फॉर माय ऑल फ्रेंड मी क्यूट रुशी खान कई बार हाल होगा आना है वाइचे वाचिवा आप जी जनाब जी वेलकम हमारे गोल गोल एंड बुल बुल मोहतरम एंड हसूसी कदरदान एंड एंड एंड एंड एंड लश्के लश्के बैठ रहे थे बिल्कुल काल तरफ से शाइस्ता एंड हाइस्ता डायमंड एंड गुल गुलाब एंड चंबेली की तोरा मेरे प्यारे से अनमोल लवली एंड किशमिश वीआईपी भाई जानी खो ओके आई एम फुल हैप्पी यूर फैन क्यूट रुशी खान वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू थैंक यू स्वीट सिस्टर जानी क्यूट रुशी खान यू जहान मानना दूबरा दी इज्जत रोको बोलो अल्लाह पाक दी इज्जत मनेगा कदर मनेगा लोया खजर शीशा नेक्स्ट वी मी क्यूट रुशी खान स्वीट भाई जानी वो अहमियत ही क्या जो किसी की मिन्नतों से मिले वो खुशी ही क्या जो किसी के आंसू से मिले डेरा डेरा दरना खबर डेरा गहरे अल्फाज यो जहान मन्ना थैंक यू सुबीर भाई क्यूट रुशी खाना जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हीं मंजिल

अच्छा वो कदम कदम पर बह गए। अच्छी तरह सली गली जहान माना। थैंक यू सुबीर माचा। सोचना बिल्कुल नेक्स्ट मैसेज सीधे आओ बात किसे मिलाओ ठीक था क्या ना बिल्कुल तो मैसेज सीधा गाबो ना पुती के इंशाल्लाह शाम मिलाओ बहु काल तरफ तरफ काल तरफ ने गुरु जी मुझसे काल में जुड़ी हो गए ना पहला पहला के पहला पहला पहला पहला पहला पहला जी जी जी जी जी जी जी जी जी हाँ हाँ हाँ बिल्कुल दगा प्लीशा प्लीशा प्लीशा वाले न प्ले की गए। अच्छा सही था बिल्कुल काल तरफ तरह ना दीदी आवाज सारा जी

नेक्स्ट मैसेज आकर भैया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। माय स्वीट ब्रो कैसे हो, मैं इकरा वजीर फ्रॉम हड़पड़ जानी हेलना। भाई बहुत टाइम बाद मैंने आपको मैसेज किया है, मैं आपकी सारी शो साइलेंट सुन रही थी क्योंकि मेरे मोबाइल पैकेज नहीं था। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। इकरा वजीर यो जहान मानना, थैंक यू सो वेरी मच। मैसेज का बोलो दे पारा आओ दे शुगान और इधर दे पारा। नेक्स्ट मैसेज का मैं क्रिएटर शिहान भाई जानी अस्वीट भाई जानी फॉर यू। मेरे दिन हो और या रात हो तुम में अच्छा तुम में नींद मेरे ख्वाब हो तुम में लव मेरी बात हो हम मेरे साथ हो। यो जहान मैंने ना थैंक यू सो वेरी मच रोशी खान।

बिल्कुल जी, नेक फनेगा शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान। ओके जी, खबर अतरे दे तुसे पखुसन खुला खाइस पदे बंदे मिज रोजाना कवि चे तुसे ता याद दहानी दिर वकी तुसे ता दाकड़ा दिर वकी तुसे ता दिर यूद की तुसे ता दिर वशाई चे खुजिफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम दुने दोगीना डबीना तरसरी दहार।

ओके जी, शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान, हुजिफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम, हुजिफा कंपनी शिफा फेस वॉश, हुजिफा कंपनी शिफा तेल शैम्पू इस्तेमाल कीजिए। कचरे पर जेल चुक सरा आस पास तो से पुते के रही करक जेल चुक चिकिम लाए कदल तो से नजदे पुते के रही नो सीधा नवाब सुपर स्टोर पतर आप वेर रही। नवाब सुपर स्टोर सरा दे शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान टूल प्रोडक्ट अवेलेबल। नवाब सुपर स्टोर नुमा युदा सुते बिल्कुल पजेल चौक से छिदी पेशावर तरफ नरसे का नाम दे बानी पर तरफ द्रे में का नाम नो नवाब सुपर स्टोर पर गस तरफ प्रेवजी पर गस लो और छिदी बानी ना पेशावर तरफ तद्रे में का नाम नो पजेल चौक से नवाब सुपर स्टोर बिल्कुल आखिर से पशी तरफ प्रेवजी नो दे सरा शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोडक्ट अवेलेबल दी करना।

0: Radio Ama Network, News and Information Station.
1: जहाँ मिले आपको तफरी,
2: जहाँ मिले आपको मालूमात
1: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
2: रेडियो मन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
1: रेडियो मन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।

दरमान होम्योपैथिक सेंटर करक कचर ततासो पदसे मरस के मुब्तिला आए किपा आगे के बवासीर फेस्टुला यानी खूनी दाना प्रास्टेट द गुर्दे पत्री द त्रिहि पत्री थायराइड ग्लैंड यानी कदुगाड़े रसूले ट्यूमर अर्कुन्निसा और दस्तरगो पर्दे छिपा नोरो जयुनो के डॉक्टरानो तास्ता द ऑपरेशन वेले दी नुतासुराशे दरमान होम्योपैथिक सेंटर था के अल्त के डॉक्टर मुस्तफा कमाल आर एच एम पी डी एच एम एस डी आई होम डी एस सी बी एच एम एस द होम्योपैथिक द दुनिया यो तजर्बाकार डॉक्टर बतासो इलाज बगैर द ऑपरेशन द मेडिसन पर जरिया बांधे कई और देना इलावा बे औलादी मर्दाना कमजोरी जनाना पोशीदा अमराज मैदे अल्सर और द मैदे जुमला अमराज और द शुगर मुकम्मल इलाज ब्लड प्रेशर और दजड़ जुमला अमराज शामिल दी डॉक्टर मुस्तफा कमाल से पजदीद क्वांडम मैग्नेट एनालाइजर मशीन पजरिया बांधे द टोल बदन मैना कई और द दे सरा बताउस्ता फेजोथेरापी द मशीन पजरिया बिल्कुल फ्री केगी आसोराशे और दरमान होम्योपैथिक सेंटर नखपल इलाज जर तर जरा दरला सके पतेदा दरमान होम्योपैथिक सेंटर नेज खुशाल खान खटक यूनिवर्सिटी हीरो जनरल स्टोर ता बिल्कुल मखामा मोबाइल नंबर दे 0331

हाँ जी बिल्कुल मिनवार और रसूल बादशाह आवाज के दसंदरा जी कुमार दा तो से एंजॉय करवे और दे सारा सारा तुसे कमेंट तुसे काल जी कुम दी अब हम प्रोग्राम के शरीक बिल्कुल प्रोग्राम के भी हर कले टोल मिनवार दा अब बिल्कुल मिनवार तुसे कमेंट सिकुम दी रोगले दी बिल्कुल अब हम प्रोग्राम के शरीक तुसे मैसेज सिकुम दी अब हम प्रोग्राम के शरीक بالکل تو سے پروگرام تر سے مستر پروگرام کی شرکت کے بولے سے درو لیا رہا بالکل کمنٹ ذریعے سر ہے سر میسج ذریعے سر ہے کال ذریعے سر